जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस तक लिखिया लिखास।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंत

जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी।

मारिया, आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हु जो सदा हमारे पक्षा, श्री अस तो जजू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दोष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटे ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तारत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार।

सबरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ पव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे।

रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारो।

संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत।

पहला कीर्तन करने के भाई मनमोहन सिंह जैसा ठीक 7 बजे तक भाई साहब आते कीर्तन नाम सिमरन द्वारा संगत महाराज चरण जो महान प्राला करेंगे 7 तो लैके 7 मजाज तक सत्संग सिमरन होगा 7:30 लैके 8:30 तक कीर्तन करने भाई लख सिंह का जैसा सुहाग सिंह तेन बेनती है कि 8:30 तक हमारे डिगी आनंद महान जैसा सारे कीर्तन दरबार सेवन करके जीवन जी करिए सफला करो सुशांत सिंह जी आप सिंह तेन बेनती है कि अनाउंसमेंट यही है कि जो नॉर्थ हार साउथ हार डबल बिल्डिंगा बन रही ने उन्होंने वास्ते बेहंत मारी लोड़ है बेहंत प्रोहरा वालों अपनी कमाई सफर करद हो गुरु घर उन्होंने माया पेटा की है वटभागे हैं सो जिन्हें जिन्हें अज तक अपनी दसवंध सफल नहीं किया सारे ने बेनती है कि जरूर गुरु घर महाराज देख के अपने दसवंध सफल करो गुरु दी खुशियां प्राप्त करो अभी जो बिल्डिंगा शुरू हुई उन्होंने बड़ी शाना छूटना सबूत किया जा सके सो सत्संग जी आप सिंह तेन बेनती है कि 16 जुलाई है संग्रांत सावण के महीने की शहीदी है भाई तारू सिंह जी की सुशासन जो जरूर हाजियां पर सो नवे महीने जिया ने कहना है भाई तारू सिंह जी ने साडे वास्ते एक कुर्बानी की उन्होंने जरूर असं धन्यवाद करते हैं उन्होंने किदा जी भेट करिए सत्संग जी 13 जुलाई से लैके 17 तक गुरमत फ्री कैंप लग रहा है बच्चों का जिन्हों की उम्र होगी 6 से लैके 15 साल तक सो सत्संग तेन बेनती है कि जरूर अपने बच्चों इस कैंप भेज के गुरमत तो जरूर जाने करवाने की कृपालता करो सतसंग जी 24 जुलाई है मेरी पीरी दिवस जो हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने दो धुरा पहन के उस समय के होरे दुल मैं ठंड पाने वास्ते ये महान कदम उठाए सन सो आओ सतसंग जी अगस्त 7 है प्रकाश श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का तो सारे संगतान गुरु उसने हाल जी भरो गुरु दी खुशियां प्राप्त करो और भाई साहब तैयार ने जम करने की सरण करिए वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

नानक रंग रसाला जियो दुख तदे जा विसर जा भुख व्यापै भो बितावै। परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर दी याद नू भुला के मनुख दुनिया दे पदार्थां दी बहुत ज्यादा भुख रखदा है, वधी जांदी है वधी जांदी है। दस एक पदार्थ इकट्ठा करदा है दस दी भुख लगदी है, दस इकट्ठे करदा है ते सौ दी भुख लगदी है। सतगुरु कहिंदे ने दुखी होई जांदा है, पर उसनू समझ नहीं आती कि जे मैं प्रभु की याद विच जुड़ जावां जिसने इतनियां दातां दित्तियां ने उस तो मैनू सुख मिलना है। सो सात संगत मनियां पुल्लां करदियां दी खिमा सतगुरु महाराज कृपा करन सानू साडे सारयां दी हिरदे बाणी दा पाव सावण। हुण अधे घंटे लई वाहिगुरु सिमरन गुरुआं प्यारे कराउणगे जी, उन्हां तों उपरंत इलाही बाणी दा कीर्तन भाई हरभजन सिंह लहरी जी सरवण कराउणगे। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साथ छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो स्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै।

ध्यान इशनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गढ़ पाथर कैसे तरे यथा जाके अंतर

पूरा कहा बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुरपंग कह बिंगल पर्वत पर पवन।

अष्टपदी। दस वस्तु लेपा छे पावे, एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक पीना दे दस भी हिरले तो

आनंद मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिर

बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर देख न काहू पीन अवर उपदेसे आप न करै आवत जावत जनमै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने।

नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको स्मृत परम गत पावह, जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर स्मरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय त्यामन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै, जे प्रसाद सुख सेज सोई जै मन आठ पहर तांका जस गावी जै, जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुख तांको जस रसन बखानै, जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगै मान पावै नानक पत सेती कर जावै, जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छेत्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद आभूखन पहरी जै मन ते स्मृत को क्यों आलस की जै, जे प्रसाद अश्व हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई, तिसे त्याए जो एक लखै इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्योहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा।

प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु ना किन्हू लया।

साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटै अवमान, साध के संग प्रगटै सो ज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध के संग अगोचर मिलै, साध के संग सदा पर फलै, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथहुंता वै, साध संग अस्तित मन पावै, साध के संग माया ते पैन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसाद।

श्रेष्ठपति ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को

जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता

ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता अवध बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद।

कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास समारे।

कभू ऊंच नीच में बसे, कभू सोग हरक रंग हसे, कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब आकाश प्याल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कभू नित कर

अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बोजून प्रमावै, धन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आगे सुख।

संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सब सुख जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा दे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन किरमाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले।

संत पावै ता होए भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताई। संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन। संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्ब रोग। संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख। नानक संत पावे ता उसका भी होए मोक। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी। संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुखते टरे।

निहार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, वडभागी नानक जन से सलोक, तजो से आनप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुड़ न तृष्णा लागे आए, मारे रखे एको आप, मानुक कै किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल

से तन मंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पचाने, इत उत की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हरजन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मह सोही निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिये जम की फांसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मनचित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो से

जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए ओए सुख निदान उनो बनहाए आपस को जो आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार डाके सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गाडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे

नाम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ है जहाँ सब किच तिसका दिया दर्ब है अतसूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह जावे जे को होए बह दातार किस जीवन हार जाने गावार।

त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यों पाखाड़ नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो दूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काए बिल लाइए पूरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसै चितार जो किछ करे सोई सुखमान ऊला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रसलोभी पतंग राम नाम जप हृदय माय नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम।

काल तान तान कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए युवा पार विरलावा पारे नानक सा कह सदबलहारे चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए।

जागते पाया। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माए, पूरब लिखे का लहना पाए। सब कुछ तिसका ओ करने जोग, जिस बिन दूसर होवा ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त

जिस होवै सो प्रसन्न। अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, इस ते परे नाही किछ होए।

मंगल सतजा कह, सर्व थोक सुनिए करता कह। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी। त्याए त्याए भगतै सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरै अंत न पाया। जाकी लीला कीमत नाए,

की बाणी सत पुरख सब माए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश सत नृत्य बूझे जे को

करै भगत आत्म कह चाहे प्रभु अपने स्यों रहस्यमाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण का एक न जानो आठ पैर पर बसे हुजूर है कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे तिसके अवर से

नानक एव संचार, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, और उपाओ सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुखो नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करे पली करनी सा, सो बापज हर की सरनी, अने कुपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाय, दै जिस तावत आवे ठाए, ताको बिघन न लागे कोय, दा कर दै वसै हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूरन होया, भगत पाया तम प्रगास, तित कर जाय बसै मनासी, कौ नानक कांटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग सन गुरुदेव, और रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासर वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूरख मना, सुत मीत कुटुंब अरबंता, इनते कहो हो तुन कमन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो हो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ अस्वारी, झूठा टंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मतु ले याने, भगत बिना बोडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माए, जन्म जन्म के किल विक जाए, आप जपो अवर नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार पूत सर हर को नाओ, सह सुबाय नानक गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बित फैल, होए अचिंत भय सुख नाल, सास ग्रास हर नाम सुमाल, छार से आनक सगली मना, साध संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको दे, कहो नानक जाके मस्तक ले, एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे, एकस के गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हराप, पूरन पूरे ओ प्रभ व्याप, अनेक विस्तार एक ते पहे, एक अराज पराजित गए, मन तन अंतर एक प्रभ जाता, गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभु आया परया तो सरनाए, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए, जाचक जन जाचे प्रभु दान कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, रसदा प्रभु के गुण गाओ, साथ साथ प्रभु तुम्हें त्याओ, चरण कमल स्यो लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नितनीत, एक ओट एक आधार, नानक मांगे नाम प्रसाद, प्रभ की दृष्ट मां दुख सुख होए, हर अस पावे बिरला कोए, जिन जाक्या सो जन तृप्ता ने, पूरन पुरख नहीं डोला ने, सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध के संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन निवलाग, वटपागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सदगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा नयाल, बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया, इच्छुनी सदा सब पूरी, रवरिया सत्संग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सोको बिसरे जय काल न पाने, सोको बिसरे जय किया जाने, सोको बिसरे जिन सब किच दिया, सोको बिसरे जिन जीवन जिया, सोको बिसरे जय अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाके, सोको बिरसे जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे, गुर पूरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ते आया, साजन संत करो ए कामान, त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपाओ, भगत पाए तरिये संसार, पिन भक्ति तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो

उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंतन अंतर यह सुहाओ, नेत्रो पेक दर सुख होए, मन भिक्षे साध चरण तोय, पग जना कह मंतन रंग बिरला को पावे संग, एक बस जी जयकर मया गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाय, नान करिया सर्व समाय, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना कै प्राणदार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाय लाभ मन हीत, हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुकत मोक पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, पौ पूजन का प्रसंगी, तिरसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गर मंत, सात संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही प्रजाप, अष्टपदी, जब आकार एक कचना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध केस संकमात, जब इसका वर्ण चहन ना जापत, तब हरक सो कोख से व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, जब आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रब केवल तनी, तब बंद मुगत को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुबाय, तब शिव सकत कहो हो कित ठाय, जब आप है आप अपनी गोतरे, तब कवन डर कवन कर डरे, आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अब नाप सी सुख आपन आसन, तय जन्म मरण को कहाँ बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो हो किस होए, जब अवगत अवगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेका, जब नाथ रंजन गोग जगा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचरजा, आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो हो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अपमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत को कीस, जय जो स्वरूपी जो संग समावे, तह किसे भूख मन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तय वेद गतेव कहां को चीन, जब आपन आप उतारे, तब सगन अपसगन कहां बिचारे, जय आपन ऊंच आपन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अचेत समाया, उहां किसे व्यापक माया, आपस को आपे आदेश, तय गुण का ना ही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आप रचियो परपंच आकार, तय गुण मैं कीनो विस्तार, पाप पुन्न तय पही कहावत, को नरक को सुरक बंजावत, आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पैपार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान, आपन खेल आप कर देखे के संको चेतो नानक एक है, जय अवगत भगत तय आप, जय पसरे पासा संत प्रसाद, दो पा का आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी, आपे कौत करे अनंत चोग, आपे रस पोग निर्जोग, जिस पावे तिस अपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे।

मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जन ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सुजा नहीं कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिर चत्र चकमा नहीं प्रतीन लोक चौदह के बिख्या जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचो स्वम पव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख पेश अंग राग न रंग जा कह जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नित पाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चेद मद पार संत व प्रसाद

ब्रह्मम हेसर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस है पग ते नर फेर न देहित रहेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भगत ध्यान लगायो नहात फ्रियोलिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लियो सुबह जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु साहब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रिशा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सेख सबै करतारा मोर इच्छा निज करदा करिया सब बैरण को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ को वरण त्याऊ जो बरचाऊ सु तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन छत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे वो भरी है मरण काल का त्रास में भरी है हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुझ जू करे हो रछा राख लेहो मोय राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहपुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव दू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो, हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते

आप आप निबुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उदभुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तनके दुष्ट दुखत हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सपटारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नहे आए है रिछा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रेंद सिद घर मौसम होई दुष्ट शास हो सके न कोई एक बार जिनत मैं संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़क केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोग ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को शय करता श्री अस्तोज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई अडेल सुने गुंग जो आहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निगटना तन नरके रहे हो जो जाकि एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहसपनि जय अर्ध सहसपन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे माते एक न मान्यो सिमरत सा

जे को गुरते विमुख होवे मेरे सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होर तै कोई पुछो विवेकिया जाए। अनेक जोनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर।

कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करती रह साचा नाम मेरा आधारो। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाईया। शब्द धरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे। अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे।

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासुदेव पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से वे सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याई तो सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है करण उन्होंने आवैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रार मखरू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। श्री महाराज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहि देख डेढ़ किया जिन्हें प्यार सत्यार की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लाइया चरखड़िया चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी देखे संसाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। भाई तख्त गुरुद्वार होता ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब सरचारे आए देख टेक की फतेह मिलक की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुगुरे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंदे सदास जी गुरुद्वारा ने निकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुताम जिन्हों तो आपदे पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की आदत सेवा संभालता था खालसा जी बख्शो हे रोटिया की ओट गुरु न्यासरे गुरु धन धन गुरु को दतार पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना से अरदास हूँ आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान हुए संगत नूं दर्शन दर्दे के निहाल जी बेहद बाणियों के पाठ आज भी रागी सिंह ने आपके चरणा जा सकी वार के कीर्तन किए ने विद्वान भी उन्होंने अज के हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो हुई भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदा निशानी कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पितरवाणी टाणी बल बुद्धि बख्शो करो आज इस खुशी में आप दी बख्शियां दाता पुत्र कलाब शाह जी देगा तैयार कर खान दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखां कलेशां रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश दे रखा बख्शिश करो जी इवना कृपा करो आप जी बख्शियां दातां जो लगने तुर सवारी प्रबंध कर ले दतार अमृत वे तो लैके दर्द आईया साफ संगत जी दर्द प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगत दर्द इतने फुल पेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी गिनवाज आप चरणा सेवा कर सारे टहरी सिंह सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकल बख्शो अजे सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शिशा करो गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो दतार जी मेहनत कराओ खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वाग प्यार बख्शिश करके सब तो दाज बख्शो चन न जोड़ो गुरु का प्यार बख्श दतार हर मैदान जवान फद बख्शिश पालना करो जी ये गुरु सच्चे पातशाही हो अगर के सेवा परिवार दतार जी बच्ची हरविंदर कौर तंदुरुस्ती वास्ते सुख शांति वास्ते चारिका वास्ते बेनती कर दें बेहद माला के हर दतार प्रवान करो बख्शिश कर दें बच्ची हरविंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो गिर नवाज हरविंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो धर्म देश कौन दे आज्ञाकार बख्शी कर दतार चाढ़ी कला बख्श करके तंदुरुस्ती बख्शिश करके गरीब नवाज और रोगदारी दाज बख्शिश करके चाहना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शा निभाता करो दतार सेवकों के सारे परिवार में तंदुरुस्त सुख चाँडी चाढ़ी कला करनी चाहना जोड़ना गुरबाणी का प्यार बख्शी करना कमाइया सफल करो जी गुरु गरीब नवाज मेहर करो दूर दुराने कराने बैठी लाइव कथा किसी शरण करनी सारे संगत की हाजिरी प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ तारा भी कृपा की जिस दुद्ध बख्शे संगत आदि चाहना धनबाद कर दें शुक्रिया अदा करते हैं बेहद आने गुरु कार गुरु घर गरीब राज गुरु घर के सेवादारा
ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵਾਦ ਵਿਤਾਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਈ ਲਾਤ ਵਿਤਾਰ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕੁਲ ਦੁਕਾਨ ਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਨ ਲੜੀ ਵਾਰ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ

सब किलबिक काटे एक पलका। हर हर दयाल हुवे जिस ऊपर, हर हर दयाल हुवे जिस ऊपर, सो गुरमुख हर

पौड़ी, हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैनी, हर नाम त्याई हर उच्चरा, हर लाहा लैनी, जो जप

मर घड लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना, असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाने वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिरी होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्र जीत सिंह जी खालसा जी, वह भी पहुंच चुके हैं दासियों के बाद, उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुर की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुर की प्रसन्नता है, सतगुर जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करते हैं। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर कनेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना से सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई पटकना है, कोई किते पटक रहा है, कोई किते पटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए, उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होण वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वह देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ता कि असीं रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असीं तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उहनां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है, हाथी दे कोल बड़ा ताकतवर शरीर है, शेर दे कोल पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान को बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इतने इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण दा गेट बन जाएगा, फिर की होगा। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौण दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी दे दर ते, कदी किसी दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जा। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ